रेडियो एनआरएन 99.1 क्लासिक टेक को 200 Mbps इंटरनेट 7 महीना को लागि मात्र 5,700 मा साथ ही क्यारो टीवी एप में पाउनुहोस् 200 घंटा एचडी र एचडी टीवी वाईफाई 6 सहित को सुपर फास्ट इंटरनेट र आईपीटीवी अब क्लासिक टेक में आज जडान गर्नुहोस् कल गर्नुहोस् 9709184147

0: Web surfer, abakarkar na fast internet.
1: Tapai sundar huncha radio and RN 99.1. Sabai kalagi sutana.
2: नेपाली रेडियो नेटवर्क रेडियो एनआरएन 99.1 मा यो हो दोहोरी.

रेडियो एनआरएन 99.1 हरो विषयमा सरो बहस नेपाली बहस यस नेपाली बहसका साथमा अन्तिम तयारी चल्छौ। 20 होम इन्टरनेट

0: सम्मानमा भारतीय मीडिया आह्वान गर्दछ अहिलेसम्मकै ठूलो कथा लेखन प्रतियोगिता
1: प्रथम पुरस्कार 2 लाख
0: द्वितीय पुरस्कार 1 लाख
1: तृतीय पुरस्कार 30,000
0: टाइटल स्पोन्सर इगो
1: कल्चरल इनिसिएटिभ सूर्यनेता गाथा।